0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया,
3: इथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
0: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग, सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
6: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: बड़े बेहिसाब रहे हैं दुनियादारी।

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण तमाल।
4: ਐਤਵਾਰ
5: ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ।
6: ਇਸ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਕ, ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।

0: जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी
1: दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
5: टेंशन निरी टेंशन।
6: की होया?
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
5: हर कदम तुहाडे नाल।
7: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
8: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू बारे दसन लई।
7: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। प्रीत की होया?
2: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा है इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना दीवान थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0451-1100 0451-1100। डिजायर माइग्रेशन।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
0: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
4: ओलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां।
0: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन ले कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
5: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
6: हाँ जी रेडियो

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: अपनी हर भैन भरा उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानूं वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।
2: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देण लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900। ईमेल sales@ozlintels.au। प्रीत की होया?
3: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
2: जे तुसी भी इना दिवान थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0451-1100 0451-1100। Desire migration।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tireforce.com.au।
2: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
6: हांजी रेडियो।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
7: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
8: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
9: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
10: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के।
7: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
9: Hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
2: Je tusi bimar ho ta AI kol nahi, doctor kol janne ho. Fir kanuni masle vich faisla khud kyon? Yaad rakho, delay in law is damage in life. Family issue, property da masla, koi immigration di samasya ya koi bhi kanuni matter, ikko naam jo kam tuhade layi karde ne, Bansal Lawyers. Tuhada bharosa, sada tajruba te jit apni. Call 422-905-860 or visit bansallawyers.com.au. क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमई शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
11: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां।
2: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
12: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
1: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो
3: रेडियो, हाँ जी सुन रहे समूह श्रोतियां नूं मेरे वल्लों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दीदार सिंह, आओ इतिहास दे उस पन्ने नूं वाचन दा यतन करिए जिस पन्ने ते सिखां दे राज दी गल है, जिस पन्ने ते मुट्ठी भर सिखां ने किस तरह मुगलां दे नाल मुकाबला करके ते सरहंद नूं फतेह कीता उसका जिक्र है। यह जंग बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उना दे नाल बेअंत सिंघां वल्लों अते सूबा सरहंद वजीर खां दीआं फौजां दे दरमियान 1710 ईस्वी नूं होई सी, जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब दा किला छड्डिया ते वख-वख थावां ते हुंदे हुए जदों अखीर नांदेड़ दी धरती ते पहुंचदे ने ते उत्थे बंदा सिंह बहादुर नूं सिखां दा आगू बना के पंजाब दी धरती वल तोर देने। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा थापड़ा लैके वख-वख शहरां नूं फतेह करदिआं होइआं समाणा, सढौरा, छत, बनूड़ तो इन्हां रस्तिआं तो हुंदिआं होइआं सरहंद वल चढ़ाई करती, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे नाल आए हुए सिखां दे मनां दे विच ये गल पहलां तो ही घर कर गई सी कि सरहंद जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी नूं शहीद कीता गया है, असी उस शहर दी इट दे नाल इट खड़कावांगे। इस ख्याल नूं लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे नाल आए हुए सिखां ने वख-वख शहरां नूं फतेह करके अखीर सरहंद वल नूं चढ़ाई कर दित्ती। सरहंद तो थोड़ी दूर दे उपर ही एक चप्पड़ चिड़ी दा अस्थान है। ए लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे नाल जिहड़े सिख सन ते दूसरे पासे सूबा सरहंद वजीर खान दीआं फौजां दे विच चप्पड़ चिड़ी दे स्थान ते ही हुंदी है। जदों सिख फौजां चप्पड़ चिड़ी दे स्थान ते पहुंचियां ते साडा इतिहास कहिंदा है कि सरहंद दा सूबेदार वजीर खां वी अपणियां फौजां लै के सिखां दा मुकाबला करन दे लई अगां वल नूं वधिया। इतिहास दे अंदर ये भी जिक्र है, वख-वख इतिहासकारां ने जिक्र कीता कि वजीर खां दीआं फौजां दे विच बेअंत हाथी सन, तोपां सन, भाव के वख-वख तरह दीआं फौजां वजीर खां दी फौज दे विच शामिल सन। और सिख इतिहास दे महान इतिहासकार डॉक्टर गंडा सिंह अनुसार वजीर खान दे फौज दी जो गिनती सी वह लगभग 20,000 दे तकरीबन सी। दूजे पासे सिखां दी गिनती भी घट सी, गिनती दे पक्षों भी थोड़े सन, ना ते उन्हां दे कोल कोई तोपखाना सी, ना हाथी सन, केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा ओट आसरा लैके और गुरु चरणा विच अरदास करके तुरे हुए सिखां दे मनां दे विच केवल यही गल सी कि असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी नूं जिन्हां ने शहीद कीता है उन्हां नूं इस मिट्टी दे विच मिलाउणा। ज्यादा फौज ना होण दे बावजूद जां ज्यादा हथियार ना होण दे बावजूद भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने योग अगवाई करके सिखां नूं जथियां दे विच वंड के वजीर खान दी फौज दा मुकाबला करन दे लई भेजिया। और पहलां बाबा बंदा सिंह जी इस फौज दी निगरानी करन दे लई एक उच्चे स्थान ते बैठ जांदे ने। इह लड़ाई सरहंद दे नेड़े ही जिवें पहलां जिक्र कीता कि चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच 22 मई 1710 ईस्वी नूं होई सी। पहला पहल कहिंदे ने कि मुसलमानां दे कोल फौज ज्यादा होण करके जां साधन ज्यादा होण करके सिखां दा उन्हां ने बहुत भारी नुकसान कीता, पर ज्यों ही पल्ला पलटिया बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, फतेह सिंह जी, बाबा बाद सिंह जी, इदां दे महान आगू जेड़े उस फौज दे विच लड़ रहे सन, जदों इन्हां ने अगां वध के एकदम मुगलां दीआं फौजां दे उपर धावा कीता ते इस लड़ाई दा पासा एकदम पलटिया और सिखां दा पलड़ा जेड़ा सी उह इस लड़ाई दे विच भारू हो गया। जदों सिखां ने अकाल अकाल दे जयकारे ला के मुगलां दे उपर नंगियां तलवारां दे नाल धावा कीता, मुकाबला कीता, ते कहिंदे ने कि मुगलां दी सारी फौज जेड़ी है उह भज गई। ते एक इतिहासकार खाफी खान लिखता है कि बहुत सारा धन माल, घोड़े, हाथी ते होर जिन्हें भी शस्त्र सन उन्होंने उस सिखां दे हाथ आए। मैदान छड़ के वजीर खान की भजदी हुई फौज के पिछे ही सिखां ने तलवारां दे नाल सरहंद तक उन्होंने पिछा किया। दूसरे पासे जदों असीं इतिहासक स्रोतां नूं जां इतिहास नूं वाचदे हाँ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी जां होर बेअंत सिखां ते तशद्दद करन वाले वजीर खां दा नाम जदों आउंदा है ते उस दी मौत बारे साडे इतिहासकारां ने वख वख जिक्र कीता है कि उस दी मौत किस तरह हुई। साडे इतिहासकार ज्ञानी खजान सिंह जी लिखदे ने कि इस लड़ाई दे विच ही वजीर खां जिहड़ा है वह घोड़े तो डिग पिया ते उन्नू जिंदा ही काबू कर लिया गया। महिमा प्रकाश दे विच भी जिक्र मिलता है कि वजीर खान जिहड़ा है वह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे हत्थों मारिया गया। इतिहासकार करम सिंह ते बापू सोहन सिंह शीतल होना भी यह जिक्र किया कि वजीर खां नू तीर दे नाल जख्मी करके उन्हों घोड़े तो थले डेग दिता गया ते जिउंदे नू ही पकड़ लिया ते सिखां ने बाद दे विच वजीर खां नू एक रस्से दे नाल बन के पूरे सरहंद दे विच कड़ीसिया ते बाद दे विच उस दे शरीर नू पंछियां दे खाण दे लई, पंछियां दे नोचन दे लई एक रुख दे नाल बन दिता गया सी। असल दे विच सिखां दे मनां दे विच ये गहरा रोस सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी नू जिन्हां ने सख्ती दे नाल शहीद करवाया और बाद दे विच भी उन्हां दे शरीरां दे नाल बेअंत तशद्दद कीता गया, एक ना एक दिन उन्हां दे कोलों बदला जिहड़ा है वह जरूर लिया जाएगा। इस करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपनी फौज दे नाल वख वख शहरां नू फतेह करदिआं होइआं अखीर सरहंद दे उपर धावा बोल के 1710 ईस्वी नू सरहंद दे किले दे उपर जिहड़ा है उह केसरी निशान साहिब चला के सरहंद नू फतेह कीता। इस दिन नू सरहंद फतेह दिवस दे नाम दे नाल याद कीता जांदा है उन्हां शहीदां नू, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नू और उन्हां दे नाल शहीद हुए बेअंत सिखां नू कोटान कोट प्रणाम है जिन्हां ने सरहंद दी इट दे नाल इट खड़का के जिथे साहबजादियां दी शहादत दा बदला लिया उत्थे सिखां दा वड्डा राज जिहड़ा है उह भी स्थापित कर दिता और इस तों बाद भी सरहंद शहर दे नाल सिखां दा रोस जिहड़ा है उह इसे तरह बरकरार रहिंदा। उह भावें बाद दे विच सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दे वल्लों भी सरहंद ते हमला करके इहदी इट दे नाल इट खड़काई जांदी है। इनियां क बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते। 04332802052 ਤੇ।
2: ਵਾਓ, ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ।
4: ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਰੀ ਦੇ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਗ੍ਰਾਸ ਫੈਡ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਰ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰੋ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦਾ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਵਿਜ਼ਿਟ goldleafdairy.com।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options we available. Aao te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts Tim Forbes ya Cory Nal. Radio Hanji de hawale nal pao 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
5: ਬਲਜੀਤ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਚਲੀਏ?
6: ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
5: ਓ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ, 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
7: ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?
8: ਯਾਰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
7: ਅੱਜ ਸਿੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਰਗੇਜ UV ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ।
8: ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ।
7: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ UV ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਟ 0433-8830-3311 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ uvfinancial.com.au।

0: अच्छा
1: मैं कहते कहनी ओजी ओजी फिर ओए ओए
0: हाँ एक ते ओगी ओगी एक ते कार्टून है गावा ना
1: नहीं ओ गई है
0: अच्छा ओ गई ते ओ
1: थोड़ा फर्क पाओ बेच
0: ओके
1: हैं टोका की तर टाइप से कट्ठा ना करो
0: अंबरे केड़ा वाए कार्टून नाला ओगी या के पंजाबी वाला
2: पंजाबी
0: वाला अच्छा ओ गई ते ओ गई
1: कहते फिर दी या नैन गेड़े मार दी था नहीं
0: हाँ नजर
1: निगाह
2: निगाह
1: आई साइट
0: ओके वाह
1: आप तो सवेरे सवेरे आज सारा कुछ ही बुझी जाने
0: और आज तो पचड़ूगी छेती
1: नहीं तो अंदर पाऊगी जब मैं पहला कह के गए
0: थैंक यू अंबर तुम तो बहुत सोना गल्ला कर दे हो तुम थैंक यू
1: ठंड च जी करदा स्कूले जाण नूं आया नहीं जी करदा भी बच्चर जाई चे पए जे रहिए ते हना
2: नहीं मेरा अज सवेरे करदा सीगा पर मैनूं आया कि मेरी अटेंडेंस 100 आ तां 100 ही रहणी आ हुण
0: अच्छा 100% अटेंडेंस है ताडी
1: पॉइंट टू बी नोटेड
2: माय लॉर्ड हां जी मेरी छुट्टी है साल की ते टर्म 2 दा अद्धा भी हो गया खत्म
0: वाह
1: ट्रंप 2 दी दूजी टर्म दे विच भी इहदा आई चल रिहा
0: इह ते टीचर नालों भी ज्यादा पंक्चुअल है कुड़ी ते
2: रात मैं सारिया रोटियां मैं पकाईया
1: सीगिया
2: पंजाब
1: वर्गिया बनाईया सी मतलब स्ट्रक्चर वाइज कह रहे
0: नक्शे वर्गिया
2: नहीं नहीं
0: हाँ पापा नूं एबीसी वालियां रोटियां देनियां है
1: पापा ने कहना किलो एबीसी ही पा दियो आप दे कोड़ी सवेरे सवेरे गल्लां बनाई जांदे हो इदां तां होया ही नहीं कुछ
0: और पापा नूं ना तुसीं इदां करियो आर ओ टी आई बना के दियो
1: रोटी
2: नहीं मैं नहीं रोट बनाउणा
1: हां रोट तां पीर दे चढ़दे नाले उदां दे
0: पर वेरी नाइस मन तुसीं बहुत बीबीओ पुत्त
2: मैं
0: लगा कहिंदी मम्मा नूं मैं हार्ड रोटी बना के दित्ती मैं मम्मा नूं क्यों हार्ड
1: आ गल झूठी वे इदां नहीं पापा ने कहा सी एक्स्ट्रा सॉफ्ट बना के देनी है
0: हां मैनूं पता नहीं क्यों गलत मलत जिहा सुन लिया सारा कुछ
1: जो बंदे दे मन च हुंदा मन तुहाडे घरे लड़ाई पाउंदे आपां इधर करदे आं नूं बड़ा जिहा स्विच
0: मैं ताईओ पुछिया मैं कहा मन तां हार्ड रोटी को मम्मा नूं दित्ती है ना मम्मा नूं ते बड़ा प्यार करदी है
2: प्यार करदी हार्ट शेप वाली रोटी
0: दे हार्ट शेप वाली ओके ओके की सुनाओगे फिर अज
1: रोटी शेप
0: फिर आई तो
1: ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ABC ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦੀ ਆ,
0: ਮੰਨਤ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ AI ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
1: ਉਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ।
0: ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ,
1: ਉਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ
0: ਹੈ ਮੰਨਤ
2: ਠੀਕ ਆ
1: ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ
0: ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ।
2: ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਪਿਤਾ।

0: मेरी माँ, मेरा पिता।
1: वाह बहुत वधिया है, मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन की थी तुसी कविता च।
2: वेरी नाइस मन्नत, इत क्लैपिंग बांधी मन्नत दी, वेरी नाइस मन्नत। आते बहुत सोना लिखा तुही, ते फते नहीं पाया विच तुही
1: पंगे लिखे उस विच
2: मेरा भरा
1: नहीं, पंगे जिथे वर्ड उथे आया तुसी हो।
2: फोटो भेजो, फोटो ना भेजो, लिख के भेजो।
1: रिकॉर्डिंग किसी मेम की आवाज च करवानी लिंडा बलिंडा तो
0: कविता
1: च ना ही नहीं आया,
2: मैं पाता ना मेरा प्यारा भरा।
0: दीदी
2: यार बड़ा सोना लिख दी
1: अपने भी कोई कविता कुविता लिखवा यार। घर का जोगी जोगड़ा, बहरला जोगी सिद्ध, फतेह
2: रखड़ी ते फिर लिखो ना, जो रखड़ी आऊगी ना फिर फतेह ते कविता लिखूगी मन।
1: जो वेट कर दी होनी है भी ना बिहेव एदा वधिया हो जाए ता लिखा।
2: नहीं एदा वधिया
1: दीदी वाला ही तो नहीं, कहते मेरा पिता मेरी माता
0: नहीं
1: डिफरेंट।
2: हाँ जी

0: Tuyo.
1: Hip,
0: ¡Hurray!
1: hip,
0: ¡Hurray!
1: hip, hip,
0: ¡Hanji!
1: Angie.
0: Thank you, Tony. Thank you.
1: एक रिडल सुनाओगे?
0: हाँ जी।
1: ओ केड़ी चीज है जिदे कोल जीभ हुंदी पर ओ बोल नहीं सकता?
0: अच्छा, जीभ हुंदी पर ओ बोल नहीं सकदा।
1: हां जी,
0: घर वाला।
1: नहीं
0: हाँ।
2: मेनू ये सही ज्यादा लग रहा है। हम तक कोई आंसर करी जाओ, यही सही जवाब है।
0: और कौन है? इन्हें भी समझ लगती नहीं कि जी ना ये भी अच्छी जानती है मैं। और फिर कौन हो सकता? जीब, सांप, घर वाले तो सीधा ही सांप है।
2: मुड़ के दो ससे वाला कह देना तुसी।
1: पर जिस सप ने कारवाई नु खा अम बाइट की तरफ से कारवाई बोल नहीं सकता। हाँ,
2: दैट्स द पॉइंट। सही,
0: ये भी ठीक। ताइयों तो बोलता नहीं है।
2: मैं कितने बाइट ना वजह
0: नहीं दस्या हूं दा।
2: अच्छा, पहले ही जहर पर होना आया।
0: हाँ, चल यहीं हार गए। बता,
1: शू
0: है?
2: अच्छा,
1: शू।
0: अच्छा, ओदी जीप हुंदी आ। हम
2: तां ही तां घर वाले दा मैचिंग निकलया, जुत्ती दा काम नहीं है कोई।
0: थैंक यू।
1: आश्री ना गल कर लो।
0: हां जी, हां जी, निकलया ते समथिंग तस्मे वाला ही है ना।
1: शिका अंकल जी ते अंकल जी,
0: सत श्री अकाल जी। आश्री, क्या हाल है? चीटिंग ते नहीं कर दे कदे?
1: हां जी,
0: ये चीटिंग कर जांदे मैनूं लगदा सारे जने, है ना? हां। फिर हुण किदां, फिर की इलाज करिए फिर?
1: पता नहीं।
0: हां,
1: पता नहीं,
0: कुछ तो करना पैना वा। आप ऑनलाइन पगाटा करया करिए, रिकॉर्डिंग करके ना। रॉक पेपर सीजर, ठीक है?
1: हाँ।
0: चलो, की सुनाओगे फिर?
1: बुझा लेते।
0: हाँ जी,
1: केड़ी चीज है जो तुसी खब्बे हाथ च फड़ सकदे हो सज्जे च नहीं?
0: हाँ जी,
2: खब्बे हाथ च फड़ सकदे हो सज्जे च
1: नहीं? खब्बे हाथ च फड़ सकदे बट सज्जे च नहीं फड़ सकदे।
0: खब्बे च फड़ सकदे पर सज्जे च नहीं फड़ सकदे।
1: हाँ जी,
2: सज्जा हाथ।
1: हाँ जी,
0: हाँ। ले
2: आज ता देखो जी, कहना उंगल ते काज करन दी वेल नहीं।
0: वाह, आज चाटी फड़े गया है।
2: क्या बात है।
0: थैंक यू।
2: आई ता दोनों आकर प्राउड फील कर दिया।
1: तेरा शेलियान हैप्पी बर्थडे कहना।
0: हाँ जी, पर तू कहता ना पहन ने, फिर अपना टाइम बहुत चल जाता ना उच्च। तो ये सिंपल कह लो, फिर गा के ही ना करो ना, फिर टाइम बहुत लग जाता। हैप्पी बर्थडे श्रेया। थैंक यू पुतू, थैंक यू। तुहाडा दिन वधिया वधिया रहे। थैंक यू, थैंक यू। ते नेक्स्ट श्रेया, तुसी आउने रहो, की हाल है तुहाडा? हैलो,
1: सासरी का मानो बिल्ली है।
0: ओ सासरी काल मानो बिल्ली, म्याऊं म्याऊं, की हाल है?
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: आज दीदी के पास ते जा।
0: ए मैं बर्थडे आ किने क्या वा?
1: मामा ने
0: क्या वा? अज ते मानो, अज ते मानो बिल्ली दा बर्थडे आ।
1: नहीं दीदी दा।
0: ओ नहीं यार,
1: नहीं
0: अज ते
1: दीदी दा,
0: अज श्रेया दा बर्थडे आ।
1: हां जी,
0: हैं
1: श्रेया दीदी,
0: तुही ते बड़े इंटेलिजेंट हो यार।
1: दीदी ही 6 इयर्स ओल्ड होगी।
0: अच्छा, दीदी 6 इयर ओल्ड होगी। तुही कितने इयर हो गए हो?
1: 4। 4
0: ओके ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਤੋਂਗੇ
1: ਨਹੀਂ
0: ਹਾਂ
1: ਦੀਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ
0: ਦੀਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ
1: ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ
0: ਟੂ ਯੂ
1: ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ
0: ਟੂ ਯੂ
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Didi.
0: Happy
1: birthday.
0: Hip hip hooray. Aa bada sona wish kita vi tuhi Didi nu.
2: Te kamal karti.
0: Ye kithon sikhya hai? Ye te bada vadhiya tuhi wish sikhya va.
1: Haanji.
0: Oh very nice. Thank you Manu Billy.
1: ਬਾਏ
0: ਬਾਏ ਮਾਣੂ ਬਿੱਲੀ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਬਰਥਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦੋ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੈਪੀ ਹੋ
1: ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ
0: ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ
2: ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਫਿਰ
0: ਉਹ ਬਲਬਲ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗਾਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੈਡੀ
1: ਯੈਸ
0: ਯੇ ਜਨ

0: JBCO Films leke aaye ne action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiya Shera. Te mudiya vi kede haath ch.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi uge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke aaya. Jithon koi nahi mud ke aaya.
0: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo. 15 Mai ton tuhade nedle cinema ghara vich.
4: Sona chahida.
5: Bharosa chahida.
4: Quality te buyback vi chahida. Chale aao. Delhi Jewelers. Stockland Point Cook vikhe. Jithe 22 carat gold, classy silver, dazzling diamonds, ate gemstones. Custom jewelry tuhade order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida. Gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah. Te ओ भी वाजब रेट पे डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042 ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433 280 252 जाते 0433 280 25

0: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
1: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433-465-492।
2: इंतजार की गई संगीत मई शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
3: ओलावा इश्क दे अंबरी उड़ारिया मैनू प्यार दिया जड़िया खुमारिया।
2: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट विजिट tiktek.com.au।
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 1 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सीधी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
6: हाँ जी रेडियो।
7: एक हकीकत है कि दुनिया दी बहुत ही शायरी उदासी विचों लिखी गई, क्योंकि दुख वेले ही इंसान नू शब्दां दी याद आउंदी है। सुख वेले तां ओह दोस्तां विच वाकफां विच अपने नू प्यार करन वालियां विच घिरिया रहिंदा, पर दुख विच ओह इकल्ला हो जांदा और उस इकल विच शब्द ही उहदे लई मसीहा बन के बोलदे आ। मैं कदे कहा सी कि हमेश नाल ने मेरे सुखन फकीरां दे, ऐ शाही कहर मैं कल्ला जां बेसहारा नहीं। तो दूसरी गल है कि कई बार गज़ल निराशा चों शुरू हुंदी है पर वो आखिरी शेर तक पहुँचद्या एक आस भरी गज़ल बन जाती है। सो जो ये गज़ल है कि मिलदी नहीं मुस्कान ही होंठी सजाउण नू, दिल तां बहुत ही करदा है मेरा मिलन आउण नू। सो ये आखिरी शेर तक जांदिया एक हौसले दी एक विश्वास दी गज़ल बन जाती है कि लंघांगे तेरी भी गली एक दिन छनन छनन, तेरे बिना भी जी रहे हाँ ये दिखाउण नू।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
5: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना
6: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
7: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगने नाविच
8: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल
0: डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन

0: nutrition.com.au।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 04332852 ते।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वे दादे मंगौनिया अमलिया चाहना टेढ़ा टेढ़ा अतिले वाली जुत्ती नाली चाड़ दूं।
3: ओहो, तेरा कोई कसूर ना नारे।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी,

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, एक तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी।

आप श्री मुखवागपात सहित दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कहि जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कौन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अवेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अवेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे तर्म सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के।

तं कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदाम गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमेक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्तल अधीश है परंग परंग ईस है समस्तल अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है गजुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगान मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगान प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अतटीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबंग सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया, दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे, मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे

0: सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख

आए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जां को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कर चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

0: तिनका शब्द सचै सवारिया, कह नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
1: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे तो सो जान दे जिस

0: अंतर आत्मा समाले आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेरे मुख होवे बिन सद

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी दुर्ग से लड़ ही रहा है। दुर्ग यानी किला। किसी के ऊपर करियर का प्रेशर है, कोई रिश्तों में उलझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस और कोई अकेलेपन से जूझ रहा है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, किंतु अंदर एक युद्ध लगातार चल रहा होता है। यह संसार एक किला है, दुखों से भरा किला। मैं नहीं, शास्त्र इसे तुखाल्यम अशाश्वतम बताते हैं। तो इस किले पर विजय पाने का तो भी कोई उपाय शास्त्रों में होगा। कोई तो हमें इस किले को जीतने का राह दिखाएगा। हमारे शास्त्रों में वो कौन सी शक्ति है जो हमें इस जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालती है, जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपका दास। आज की मॉडर्न लाइफ में कोई राक्षस नहीं किंतु शत्रु बहुत है। हमारा गुस्सा, हमारी तुलना करने की आदत, सोशल मीडिया का दबाव, लगातार बढ़ती इच्छाएं और मन की बेचैनी, आज के टाइम में यही असली राक्षस हैं। हम दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए भले ही दिखते हैं किंतु भीतर डर, चिंता और असुरक्षा छुपी रहती है। ऐसे समय में माँ दुर्गा का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम इंसान विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ खड़ा होता है तो वह अपने जीवन के हर दुर्ग को जीत सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्गम तारति इति दुर्गा, यानी जो कठिनाइयों से पार उतारे वही दुर्गा है। इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। जब एक माँ अपने बच्चे को हर मुश्किल से बचाती है तब कोई इंसान टूटने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जब कोई युवा गलत रास्ते को छोड़कर सही दिशा चुनता है वहां भी दुर्गा की शक्ति दिखाई देती है। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। दुर्गा शब्द संस्कृत धातु की दुर्ग से बना है। दुर्ग का अर्थ है कठिनाई, संकट, किला या ऐसा मार्ग जिसे पार करना अत्यंत कठिन हो। इसलिए दुर्गा का अर्थ हुआ वह शक्ति जो जीव को समस्त दुर्गम परिस्थितियों से पार कराती है और उसकी रक्षा करती है। माँ दुर्गा की महिमा को थोड़ा और गहराई से जानते हैं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है और आप कानों के माध्यम से कर रहे हैं पुण्य दर्शन माँ दुर्गा की। देवी के इस स्वरूप का वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है, जहां देवी को दैत्यों का विनाश करने वाली और भक्तों के भय को दूर करने वाली कहा गया है। प्रसिद्ध मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। यह दर्शाता है कि देवी समस्त जीवों में शक्ति के रूप में स्थित है और हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी दुर्गा को भगवान की बाहरे शक्ति माया शक्ति के रूप में समझाया है, जो इस भौतिक जगत का संचालन करती है। और भगवत गीता में तो स्वयं भगवान ने कहा है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यानी मेरी देवी शक्ति को पार पाना बड़ा कठिन है। इस दृष्टि से दुर्गा केवल बाहरी संकटों से रक्षा करने वाली देवी नहीं, बल्कि जीवन में जीव को काम क्रोध लोभ मोह और अज्ञान जैसे आंतरिक शत्रुओं से भी मुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। जब जिंदगी में मुश्किल लगे ना, जब लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तब याद रखिए हर इंसान के भीतर एक शक्ति छिपी है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यही माँ दुर्गा का सबसे बड़ा संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अंधकार से लड़ो और जीवन को साहस से जियो। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स दे ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 04231029000, ईमेल sales@ozlintels.au।

रेडियो हांजी सुन रहे सारे श्रोतियां नूं रणजोत सिंह वल्लों सत श्री अकाल अदाब सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग। आस करते हैं सारिया का दिन बहुत ही सोहना चढ़िया होगा। एक बार फिर तो हसते मुस्कुराते ढेर सारिया आसा उम्मीदा अज के दिन तो ला के निकल तुरे हो गए घर तो फिर चल रही हो तैयारियां जिते भी कितने आस करते हैं राज खुशी हो गए चढ़ती कला च हो गए उस रब का शुकराना कर रहे हो गए अज का यह सोहना प्यारा दिन मिले अज के दिन ढेर तुम खुशियां मिल मन के उत्ते बोझ परेशानियां आओ एक पासे रख के नवे सिरे नवे दिन की शुरुआत करते हैं एहसास के नाल कि नवा दे रहा तो नवे तजर्बे रहेंगे कल दे नालों कुछ वक्रे रहेंगे ज़्यादा उसारू ज़्यादा चंगे ज़्यादा खुशियां वाले। अरदास करते हैं कि जो भी ताडे अड़े फड़े काम ने वो सब आसान जे तरीके दे नाल पूरे होण ते अरदास आपां एक दूसरे दे लई कर सकते हैं। कहिंदे ने अपने आप दे लई हर कोई करता वधेरे उहदा मन्निया जाऊ जिहड़ा किसी दूसरे लई करता ते जिहड़ा किसी दूसरे दे लई काम कर रहा होवे वो आपां वी नोटिस करके कह दिंदे आ बंदा बड़ा भला ते जे आपां कह दिंदे ते रब ते हर इंसान च वसदा फिर वह भी नोटिस करता हो ते आओ फिर इहो जी भावना लैके मन दे विच शुकराना लैके चेहरे ते मुस्कुराहट लैके वधते हां अगे प्रोग्राम हांजी मैलबन दे विच शब्द कीर्तन का सरवण करते हैं अगे मिलते हैं होर भी बहुत सारिया गल्लां बातां दे लई रेडियो हांजी 1674 आनंद।

0: इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654492।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 04100045555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
4: सूरज देवता
3: की मतलब?
4: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
3: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाउणा है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 04480664494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। दियो रेडियो हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: अरे जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ओबिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते।

0: Bankers. अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू
1: टेंशन टेंशन निधि टेंशन
2: की हुआ
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल
0: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हर चौहान नो 0433-280-252 04332502

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802552 ते।

0: अपने जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरे दोस्त छुड़ाने चले गए और ये तीसरे दोस्त ही है ना।
1: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
2: सोना चाहिदा,
3: परोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
5: सूरज देवता
4: की मतलब?
5: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
4: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
6: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।